जागे उधरियो जगते उधार नाम सतगुर तुठ पायो आप नाहे अवर सर काम बारंतर पूरी पड़ी ज्योत रूप हर आप गुरु नानक कहायो ताते अंगद पयो तत् स्यों तत् मिलायो अंगद कृपा धारे अमर सतगुर तिर कियो अमरदास अमृत छतर गुर रामै दियो गुर रामदास दर्शन परस कै मथुरा अमृत बैण मूर्त पंच परमान पुरख गुर अर्जन पिखो नैण सत रूप सत नाम सत संतोख धरियो उर आदि पुरख प्रतख लिखियो अशर मस्तक धोर प्रगट ज्योत जगमगै तेज भू मंडल छायो पारस परस परस परस गुर गुरु कहायो भन मथुरा मूरत सदा थिर लाए चित सा।

तेह जन जाचो जगत पर जानियत बासुर रैन बस जाको हित नाम स्यों परमे अतीत परमेश्वर कै रंग रंगे ओ बासना ते बाहर पैदे कियत धाम स्यों अपर परंपर पुरुष प्रेम लागे हो बिन भगवंत रस नाहीं औरे काम स्यों मथुरा कुप्रभ सर्ब मैं अर्जन गुर भगत कहे

फुन बेद बेरंच विचार रयो हर जाप न छाड्यो एक करी। मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सृष्ट निहाल करी। रामदास गुरु जग तारन को गुर जोत अर्जन माह तरी। जग और न जाहि महातम मैं अवतार उजागर आन कियो। तिनके दुख कोटक दूर गए मथुरा जिन

बतायो, कल कोर समुद्र में बूढ़त थे कब हूं मिट है नहीं रे पछतायो। तत विचार यह मथुरा जग तारण कौ अवतार बनायो, जपयो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर बनायो। काल समुद्र भय रूप प्रगट हर नामे उदाहरण, बसै संत जिस हृदय दुख दरिद्र निवारण। निर्मल पेख अपार तास बिन अवर न कोई, मन बच जिन जाण्यो पयो ते समसर सोई।

गोरियर जन पर तक हर आ जाए गंग जाले अटल सिख संगत सब नावे नित पुराण बाचिंग वेद ब्रह्मा मुगावे आ जाए चबर सिर ढुले नामी अमृत मुख लियो गोरियर जन सिर शतर आप परमेश्वर दियो मिल नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पै गयो हर बंस जगत जस संचरियो सो कवन कह श्री गुरमयो देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर पायो हर सिंघासन दियो श्री गुरु तां बैठायो रहस कियो

एक ओहंकार सत नाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। श्लोक 12 ते वधीक महला पहला। ओ तंगी पै ओहरी गहरी गंभीरी ससुड़ सुइया किव करी निवण ना जाए थणी। गच जे लगा गिड़बड़ी सखिए तौ लहरी से पी ढेंदे डिठ मैं मुंद ना गर्भ थणी। सुन मुंदे हरण आखिए गूड़ा बहण अपार पहला वस्त सिंझाण कै ताकी चै वपार। दोही दिच्चै दुर्जना मित्रां कू जयकार जित दोही सज्जन मिलन लो मुंदे विचार। तन मन दीजै सज्जना ऐसा संसार ते सिउने ना की चई जे दिसै चलनहार। नानक जिन्नी अमकर बुझिया तिन्ना विटों कुरबान। जे तू तारू पाण ताहू पुछ तिड़न कल ताहू खरे सुजान। वन्या इन्नी कपरी चढ़ चखड़ उहाड़ लहरी वैन लखीसरी सतगुर सिंह वाला बेड़े डुबन नाह पाओ। नानक दुनिया कैसी होई सालक मित न रहयो कोई। पाई बंदी हेत चुकाया दुनिया कारण दीन गवाया। है करके ओ करेन गल्लां पिटन सिर खोहेन। नाओ लैण यार करन समाए नानक तिन बलिहार जाए। रे मन डीग न डोलिया सीधे मार्ग ताओ पचै बग डरावनो अगै अगन तलाओ। सह सह जीरा पर रहो माँ को अवर न टंग। नानक गुरमुख छुट्टी है हर प्रीतम स्यों संग। बाग मरै मन मारिया जिस सतगुरु दीख्या होए। आप पछाणै हर मिलै बहुड़ न मरना होए। कीचड़ हाथ न बूढ़ई एका नदर निहाल। नानक गुरमुख उभरे गुर सरवर सच्ची पाल। अगन मरै जल लोड़ लो वैण घोर निध जल नाहे। जन्म मरै परमाइय जी लख कर्म कमाहे। जाम जगात न लगई जे चलै सतगुरु पाए। नानक निर्मल अमर पद गुर हर मेलै मेलाए। कलर केरी छपड़ी कौआ मल मल नाए। मंतन मैला अवगुणी चिंज भरी गंधी आए। सरवर हंस ना जानिया काग कुपंखी संग। साकत स्यों ऐसी प्रीत है बूझो ज्ञानी रंग। संत सभा जयकार कर गुरमुख कर्म कमाओ। निर्बल नावन नानका गुर तीरथ दरियाओ। जन्मे का फल क्या गणी जा हर भगत न पाओ। पैंदा खादा बाद है जा मन दूजा पाओ। वेखण सुनना झूठ है मुख झूठा आ लाओ। नानक नाम सला तू होर हों।

0: सोई ब्राह्मण पूजन जोगत खत्री सो जो कर्म का सूर पुन दान का करे शरीर खेत पछाण बीजै दान सो खत्री दरगाह परवान लाभ लोभ जे कूड़ कमावै अपना कीता आपे पावै ताना तपाए तनूर ज्यों बालन हड न बाल सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर पिरी समाल सबनी घटी शाह वसै शाह बिन घट ना को नानक ते सुहागणी जिन गुरमुख प्रगट होए ज्यो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर धर तली गली मेरी आओ
1: प्रेम खेलन का चाओ सिर धर तली गली मेरी आओ इत मार्ग पैर दी जाए सिर दी जाए कान ना की जाए नाल कराड़ा दोस्ती कूड़े कूड़ी पाए मरना जापे मूलिया आवे किते थाए ज्ञान हीन गा ज्ञान पूजा अंधवरतावा पाओ दूजा गुर बिन ज्ञान धर्म बिन ध्यान सच बिन साखी मूल न बाकी माणू कल्ला उठी चलै साध नाही वेही गल्लै राम चुले दल मेल वाय अंतर बल दकार बंतर की सेना सेवी आए मन तन जोज अपार सीता लै गया दैस राओ लक्ष्मण मोस राप नान करता करण हार कर वेखे थापो थाप मन मैं झूरे राम चंद सीता लक्ष्मण जोग हनुमंतर आराध्या आया कर संजोग पूला दैन समझी तिन प्रभ किए काम नानक वे प्रवास हो कीर्तन मिटी राम लाहौर शहर जैर कैर सवा पैर महला तीजा लाहौर शहर अमृत सार सिफती दा घर महला पहला उदो साहे क्या नसाने ही तोट ना आवे अन्ने ही उदो सी करे ही बुठी कुड़ी रनी तमी सती रनी करे से आपा रोमन कुड़ी कमी जोले वैसो देवे नाही खटे दम सहमी पबर तू हरियावला कवला कंचन वन कै दोखड़े साड़ियो काली होई है द्योरी नानक मैं तन भंग जाना पानी नाल हां जे सेती मेरा संग जे डिटे तन पर फड़े चढ़े च वगन वन राज ना कोई जीविया पहुंच न चलिया कोए ज्ञानी जीवै सदा सदा सुरती ही पत होए सर्फ है सदा सदा एवं गई विहाए नानक इसनु आखिए बिन पुछया ही लै जाए दोष ना दियो राय नो माचले जां बुढ़ा होवै गल्लां करे कणेरियां तां यन्ने पौना खाती टोवै पूरे का किया सब किश पूरा घट वद किश नाही नानक गुरमुख वैसा जाणै पूरे माए समाई सलोक महला तीजा इक्यो अंकार सतगुर प्रसाद अभ्यागत न आखिया जिनके मन में परम तिनके दिते नानका ते हो जेहा धर्म अभय निरंजन परम पद ताका पीक कोए तिसका भोजन नानका बिरला पाए कोए ओ पंडित ज्योत की।

माया पुअंगम सर्प है, जग के रिया बेख माए, बेख का मारण हर नाम है। गुर गरुड़ शब्द मुख पाए, जिनको पूर्व लिखिया तन सतगुर मिलिया आए। मेरे सतगुर निर्मल होया, बेखो में गया बेलाए। गुरुमुखा के मुख उजले, हर दरगाह शोभा पाए। जन नानक सदा कुर्बान देन, जो चाल है सतगुर पाए। विच सतगुर पुरख निर्वैर है, नित हृदय हर लिवलाए। निर्वैरे नाल वैर रचाए, अपने कर लू की लाए। अंतर

पाए हर गुरमुख कृपा तारियन जन विछड़े आप मिलाए जन नानक तिस बलिहारणे जो सतगुर लाके पाए नाम लगे से उबरे बिना वे जमपुर जाहे नानक बिना वे सुख नहीं आए गए पुछताहे चिंता ताबद रह गए।

सदा रहे और तार, तिसना बूझे तप्त होए हर के नाए प्यार। नानक गुरमुख पाइए अरे अपनी कृपा तार, बिन शब्द जगत भर लिया कहना कछु न जाए। हर रखे से उबरे शब्द रहे लिवलाए, नानक करता सब कुछ जानदा जिन रखी बणत बनाए। होम जग सब तीर था पर पंडित थके पुराण, बिख माया मोह न मिटई विच होमे आवन जान। सतगुर मिलिया माली उतरी हर जपिया पुरख सुजान, जिना हर हर प्रभ सेविया जन नानक सद कुरबान। माया मोह बो चित वधे भो आसा लोभ विकार, मन मुख असर नाथी है मर बिन सजाए खिनवार। बड़ पाग होवे सतगुर मिले होमे तजे विकार, हर नामा जप सुख पाया जन नानक शब्द विचार। बिन सतगुर भगत न हो भई नाम न लगे प्यार, जन नानक नाम आराध्या गुर के हित प्यार। लोभी कावे साहो न कीजे जे का पार वसाए, अंत काल तिथे तो है जिथे हाथ ना पाए। मन मुख से ती संग करे मुह काल के दाग लगाए, मुह काले तन लोभिया जासन जन्म गवाए। सत संगत हर मेल प्रभ हर नाम बसे मन आए, जन मरण की मल उतरे जन नानक हर गुण गाए। तोर हर प्रभ करते लिखिया सुमेटना न जाए, जियो पिंड सब तिसदा प्रतपाल करे हर आए। चुगल निंदक भूखे रोल मुए इना हाथ ना किथा उपाए, बाहर पखंड सब कर्म कर है मन हृदय कपट कमाए। खेत शरीर जो बीजिए सो अंत खलो आए, नानक की प्रभ बेनती हर पावे बख्श मिलाए। मन आवन जान न सूजई ना सूजे दरबार, माया मोह पलटिया अंतरा ज्ञान गुवार। तब नर सुता जागया सिर डंड लगा बपार, गुरमुखा करा उपर हर चेतिया से पाइन मोख द्वार। नानक आप उदरे सब कुटुंब तरे परवार, शब्द मरे सो मुआ जापे गुर प्रसादी हर रस तापे। हर दरगा गुर शब्द सिंजापे, बिन शब्द मुआ है सब कोए। मन मुख मुआ अपना जन्म खोए, हर नाम न चेते अंत दुख रोए। नानक करता करे सो होए, गुरमुख बूढ़े कदे नाही जिना अंतर सुरत ज्ञान। सदा सदा हर गुण रवे अंतर सहज ध्यान, ओए सदा आनंद बवेक रहे दुख सुख एक समान। तिना नदरी इको आया सब आत्म राम पछाण, मन मुख पार्ग बिरद समान है जिना अंतर हर सुरत नाही। बिच हो में कर्म कमाव दे सब तार मराए के जाही। गुरमुखे निर्मले गुर के शब्द सुभाए, उना मैल पतंग न लगई जे चलन सतगुर पाए। मन मुख झूठ न उतरे जे सो तोवन पाए, नानक गुरमुख मेलियन।

को बड़ी कथाए मिठी गणक मंत्रिया नान से उबरे जिन्ना पाव मथाए सुतरे सोई सवान जो रते से अपने प्रेम विशुवातनी सो अठे पैर लवन सुतरे संख माया झूठी कारण नान से जगान जरसना नाम उचारण मृत्यु ना पे पूर्ण उठे नर गंधर्व जिनी सच राध्या नानक मंथन बाब पद उदाहरण पार ब्रह्म समर पुरख अपार जिसे उदारे नानका सो सिमरे सिजनवार दूजी छोड़ कवाटड़ी एक स्यों चित लाए दूजे पावी नानका वैण लड़ंदड़ी जाए ते हटड़े बाजार सौदा करण मंजारे आ

तेजा सिर जा हम दशा जैस पास बैठे सोही है सबना दा वैसा क्यों अंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला नावा गुण गोबिंद गायो नहीं जन्मे आकार थकीन कहो नानक हर पज मना जे बेद जल को मीन बिखयन सिंह काहे रचियो निमख न हो अदास कहो नानक पज हर मना परे न जम की भास तरना पो ही गयो लियो जरा तन जीत कहो नानक पज हर मना औद जात है बीत बिरद प्यो सूज नहीं काल पहुंचो आन कहो नानक नर बावरे क्यों न पजे भगवान तनदारा संपत सगल जिने अपनी कर मान इन मह का संगी नहीं नानक साची जान पद ते उदारन पै हरन हर अनाथ के नाथ कहो नानक ते जानी है सदा बस्त तुम साथ तन तन जय तो को दियो तास्यो न्यो न कीन कहो नानक नर बावरे अब क्यों डोलत दीन तन तन संपै सुख दियो अर जय नी कै ताम कहो नानक सुन रे मना

मन कौ नानक सुन रे मन सो मूरत भगवान उस्ताद निंदे आनाज कंचन लो समान कौ नानक सुन रे मन मुक्त ताहे तै जान हरख सोग जाके नहीं बैरी मीत समान कौ नानक सुन रे मना।

लोभमोहंकार को नानक आपन तरे और न लेते उदार जो सुपना और पेखना ऐसे जग को जान इन मैं का साचो नहीं नानक बिन भगवान निस दिन माया कारण प्राणी डोलत नीत

जैसे जलते बुध बुदा उपजय बिन से नीत जाग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत प्राणी कशु न चेतही मद माया कह अंद कहो नानक बिन हर भजन परत ताहे जम बंद जौ सुख को चाहे सदा शरण राम की ले कौ नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख दे माया कारण तावही

न पाजै अरूप राम तह जान। हर जन हर अंतर नहीं नानक साचे मान। मन माया मैं बद रहो बिसरो गोबिंद नाम। कहो नानक बिन हर भजन जीवन कौने काम। प्राणी राम न चेतही मद माया कह अंद। कहो नानक हर भजन बिन परत ताए जम्बंद। सुख में बहु संगी पै दुख में संग न कोय। कहो नानक हर भज मना अंत सहाई होए। जन्म जन्म पर मत फिरयो मिट्यो न जम को त्रास। कहो नानक हर भज मना निरपै पावै बास। जतन बहुत मैं कर रहे हो मिट्यो न मन को मान।

माला राग एक संग पंज ब्रंगण संग लापे आठो नंदन प्रथम राग पैर हो करही पंज राग ने संग उचार प्रथम पैर भी बिलावली पुनिया की गावे बंगली पुनसले की गे पे बारी है पैरों की पंचो नारी पंज मर्द सासना वह बंगाल मद माधव गावे ललत बिलावल गावही अपनी अपनी भांत अष्टपुत्र भैरव कह गावे गायन पातरे दुधिया माल कौस गला पै संग रागनी पंचों था पै गुण करी और देव गंधारी गंधारी सिंहती उचारी तनासरी है पांचों गाय मारा कौ सक संग लाई मारू मस्तंग मैं वारा प्रबल चण कौस के अबारा कौहड़े ओपर नद गाये अष्ट माल कौ सक संग लाए पुनायो हिंडोल पंच नार संग सोती उठे तान कलोल गायन तार मिलावे तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर साई सरसी लै पार जा संग लाई पंचो आर जा सुरमा नंद पास कराये चंद्र बे मंगलन सहाय ससबान हुआ बनोदा गावे सब बसंत कुमोदा अष्ट पुत्र मैं कह सवारी पुनाई दीपक की बारी काशेली बड़ मंजरी टोडी कही अलाप का मोदी ओ गुजरी संग दीपक के था कारंगा कुंदले ओ रामा कमल को चंपा के नामा गौराव कला कल्याण अष्ट पुत्र दीपक के जाना सम सिरा वै गावे पांचो संग ब्रंगण लावे बैरारी करण हटी तरी गवरी गावे आसा भरी ते पासे सिंध भी अलापी श्री राग से पांचो तापी सालू सारग सागरा और गुण गंभीर अष्ट पुत्र श्री राग गुण गौ गंभीर कष्ट मेघरा वै गावे पांचो संग ब्रंगण लावे सोड गुण मलारी तुनी पुन गावे आसा गुण गुनी उचा सुरसो पुन गिनी मेघरा स्यो पांचो चीनी बैरा दर गई दर के दारा जबली तन रो जल तारा पुन

कबीरा जहां ज्ञान तहां धर्म है, जहां झूठ तहां पाप, जहां लोभ तहां काल है, जहां खिमा तहां आप।